0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0383 5569

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराब पर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर। राब्ते जे लाए 0320180003।

जरूरी है। कितने दिन सोएंगे दुनिया में, जरा सोचे ना, हम कितने दिन यहां सोएंगे, कितने दिन बेहिसी का सबूत देंगे, कितने दिन हम अल्लाह के कलाम से बेरगबती करेंगे। अगर यहां से भागेंगे तो भाग के कहां जाएंगे? क्या वापस अल्लाह की तरफ नहीं जाना? पलटना तो है, किसका नुकसान होगा फिर सिवाय अपनी जात के? सोए हुए इंसान को तो उठाया जा सकता है, लेकिन जो जागते हुए भी और जागने की जगह पे सोए, फिर उसको कौन उठाए? क्योंकि लिसनिंग की भी कई कैटेगरीज है ना। लिसनिंग का एक दर्जा वो है कि जिसमें इंसान अपनी उन कुव्वतों को बेदार कर लेता है कि वाकई हर बात समझ में आने लगती है। और एक लिसनिंग वो लिसनिंग है कि जो बस इसलिए हो रही है कि एक आवाज आ रही है और आप सुन रहे हैं। असल में ये आयत पिछली आयत से ही लिंक्ड है कि जिन लोगों के दिल अपनी जिद और हठधर्मी की वजह से मर चुके हैं, वो मुझसे देखकर भी ईमान नहीं लाएंगे, और जिन लोगों को हिदायत कबूल करना है, वो तो आपकी मौजज़ों के बगैर एक सीधी बात भी समझ जाएंगे। वकालू, और उन्होंने कहा, लौला नुज़िल अलैहि आयतुम मिन रब्बी, क्यों नहीं उस पर कोई आयत? इस कुल इन्नल्लाह कादिरुन, कह दीजिए बेशक अल्लाह कादिर है, अला अन युनज़िल आयतन, इस बात पर कि वो एक निशानी उतार दे। वो निशानियां लाने पे पूरी कुदरत रखता है। ولكن اكثرهم لا يعلمون, लेकिन इनकी अक्सरियत इल्म नहीं रखती, इनकी अक्सरियत जानती नहीं है। हैरत की बात है ना कि इंसान इस दुनिया में दिन रात कई मौजजे देखता है। मसलन सूरज का तुलू और गुरूब होना कोई मौजजे से कम नहीं, आसमानों पे परिंदों का उड़ना मौजजे से कम नहीं, बादलों का आना जाना, पानी भर के उठा के दूर दराज जगह ले जाना मौजजे से कम नहीं। ये बड़ी बड़ी निशानियां हैं जो हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं, लेकिन कुछ लोग इन निशानियों के हुजूम में एक और निशानी मांगते हैं और कहते हैं क्यों नहीं कोई और निशानी आ रही। तो बात यह है कि जो लोग कायनात की इन निशानियों से सबक नहीं पाते, वो किसी नई निशानी से भी फायदा नहीं उठा सकते। अक्लमंद को तो इशारा ही काफी होता है। और असल बात यह है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सवाल निशानी का नहीं है बल्कि इनकी बेइल्मी का है। अक्सरहुम ला यालमून, ये इल्म नहीं रखते। अच्छा, जब ये लोग बार बार मुतालबा करते थे और मौजजा नहीं आता था, तो ये कम इल्म कम अकल लोग समझते कि शायद अल्लाह ताला उतार नहीं सकते। फरमाया, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं, वो सब कुछ ला सकता है। इन्नल्लाह कादिरुन अला अन युनज़्ज़िला आया, अल्लाह इस पे कादिर है कि मौजजा ले आए, जैसे बनी इसराइल पे पहाड़ को उठाया था। लेकिन बात यह है कि तुम्हारे ही भले में मौजजा नहीं लाया जा रहा, क्योंकि मौजजे का इनकार फिर इंसान को अजाब से दोचार करता है। और मौजजे क्या मांगते हो, जरा अपने आसपास तो देखो। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी, और कोई जानदार ऐसा नहीं जो जमीन में हो। वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही, और न कोई परिंदा जो अपने दो परों के साथ उड़ता हो। इल्ला उममुन अम्थालुकुम, तुम्हारी ही तरह। तुम्हारी तरह से मुराद क्या है? वो भी जिंदगी रखती हैं, वो भी रिस्क पाती हैं, उनमें भी जान है, लेकिन देखो तुम्हारा ना फर्क है। दबीब कहते हैं रींगने को, सबसे आहिस्ता चाल को दबीब कहते हैं। कहा जाता है कि जानवरों और परिंदों और हशरात की तकरीबन 10 लाख किस्में हैं। तुम अल्लाह से मौजजे मांगते हो? देखो, जानवरों की शक्ल में उसने कई मौजजे पैदा किए, उनकी शक्ल में ये मौजजात अंदर भी खाते पीते हैं। मा फर किताब मिन शय, हमने किताब में किसी चीज की किताब से क्या मुराद है? यहां किताब से दो माने मुराद लिए गए हैं, एक तो लौहे महफूज और दूसरे कुरान। यानी अगर अल्लाह का खास रजिस्टर मुराद लिया जाए, तो फरमाया कि इन सब का रिकॉर्ड हमारे लौहे महफूज में मौजूद है। और अगर अल किताब से मुराद कुरान मजीद लिया जाए, तो इसका माना यह होगा कि हमने कुरान में अपने सारे दलायल बयान कर दिए हैं। दलायल बयान करने में हमने कोई कमी नहीं की, वो दलायल भी अल्लाह की आयात हैं, निशानियां हैं। ثم الى ربهم يحشرون, फिर वो अपने रब की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601100।
3: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
4: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
3: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे। जैसे के ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस।
5: इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अल हबीब के 1300 डेज और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आप रेमिटेंस 19 बैंक अल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
6: तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: तवाके तवाजे क्लास तई वठी वन्या। ये आहे तव्हांजी क्लास।
8: कॾहिं ईअं थींदो आहे त ॿारनि जे सिखण समझण जी सलाहियत महदूद लॻंदी आहे।
9: अस्सलाम अलैकुम बारो।
8: मसालो तालीम न, पर खुराक में ज़रूरी ग़िज़ा जी घटिताई हूंदी आहे।
9: तव्हांजो छा नालो आहे?
7: मैडम, तव्हां स्कूल ऐं ॿारनि जो हाल ॾिसी परेशान थी वियो। पढ़ाई में बिल्कुलु हुननि जी दिलि न आहे लॻंदी, बार बार फेल थींदा आहिनि।
9: तव्हां पंहिंजो लंच बॉक्स ॾेखारियो। हिते कंहिंखे हिननि जो ख़्याल ई न आहे आयो। ॿारो, अॼु खां असां हिकु नओं सिलसिलो शुरू कंदासीं। असां सिखंदासीं त सिहतमंद खाधो कहिड़ो हूंदो आहे। छा ठाहियो अथई अहमद?
10: सुबुह की पहली किरण।
8: मुतवाज़िन ग़िज़ा महांगी नाहे हूंदी, बहितरीन ग़िज़ा ॿारनि जो बहितरीन मुस्तक़बिल। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो।
11: मां खाधो गरम करे थी वठां।
12: ॿुध, थकल थकल पई लॻे घणी, ख़ैरियत आहे?
11: तव्हांजो पुटु सुम्हे ई नथो पूरी राति। मां त खीर प्यारे प्यारे थकी थी पवां।
12: तूं हल वे, मां अचां थो। हल तूं।

0: हे वट एड़ी शयूं खांदी कर सेहत ठीक रहंदी
1: तवा खाओ
0: ना ना तू खा तू ना खांदी ते मां के खाइंदम
2: तेरा ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे
3: खीर पीअण वाली माओ जी बेहतरीन गिज़ा माओ ऐ बार इन्हीं जो हक है ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐ कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता

ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट बुधन में अचान शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वदन जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधन मर्दन औरतुन में वजन जो न वधन उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-96-851
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन दीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
1: बुक स्टूडियो सीजन 15।

0: It's 11 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
3: विचोबर में जंगे असरन बाबत पाकिस्तान जे मुख्तसर वक्त लाए मुआयशी मुंतजर नामे के गैर यकीनी बढ़ाए छो है वो वाजे न है पाकिस्तानी मैशत जो हालतू कड़ी पॉलिसी वेंदी बुनियादी मंजरनामे तहत खचो है तो ईरान जंग सबब है महंगाई अजा वी ईरान जंग पाकिस्तान में मुआयशी शहर में इजाफे अदायगन के तवाजुन के भी मुतासर कती एटमी असासा अग्राई लाए न पर मुल्क के दिफाव लाए न अकवारी जंग में दुश्मन पाक फौज सिखारल सबक समूरी जमार याद रखो काबिना इजलास के खिताब कंदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चो तो शहीद जुल्फकार भुट्टो एटमी प्रोग्राम शुरू कयो ए नवाज शरीफ मुकम्मल कयो दुनिया पाकिस्तान के जिम्मेवार एटमी ताकत तौर सुने थी हुकूमत आवाम के रिलीफ फराहम करने लाए समूरा वसला कतब आने रही है अकवारी जंग में कामयाबी जो ॾियारो भरपूर जोश ए जज्बे से मल्हायो वियो सहकार में फायदो ए शिकताण सा नुकसान थींदो आहे चीनी सदर शी जिनपिंग अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ बदिरां वहिंवार थियण जो मशवरो ॾेई छॾियो सदर ट्रंप खे ॾिनल आजाण खे ख़िताब कंदे चीनी सदर चयो त अमरीका ऐं चीन जो तालुक दुनिया में सभिनी खां अहम आहे ॿई मुल्क गॾिजी तरक़ी करे सघनि था अमरीका खे ॿीहर अज़ीम ब्रांड चीन जी तरक़ी सां भेट रखे थो अमरीकी सदर ट्रंप चयो त चीन हाणे अमरीका खे हथियार फराहम न कंदो चीनी सदर चयो त वो आमना हुरमुस के खुलियल ॾिसण चाहे थो ऐं आमना हुरमुस मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खां टूल टैक्स जे उॻाड़ी ख़िलाफ़ आहे चीनी सदर आमना हुरमुस खुलण लाइ मदद जी बि आश कई आहे सदर ट्रंप आमना हुरमुस ऐं ईरान बाबति चीनी सदर सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे चीन बि आमना हुरमुस जे मुकमल तौर ऐं बिना रंडक जे बहाली चाहे थो अमरीकी परडे॒ही वज़ीर मार्क रोबियो चयो आहे त ईरान वारे मामले ते ॻाल्हियुनि में अॻभराई थी रही आहे चीनी सदर सां बि सदर ट्रंप जे ईरान जे मामले ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल थी आहे ईरान में असांजो मक़सदु पूरो नाहे थियो ईरान ते ॿीहर जल्द हमिलो करे सघूं था इसराइल जे दिफ़ा वारे वज़ीर इसराइल कार्ट्स चयो आहे त ईरान ख़िलाफ़ घुरबल मक़सदु हासिल न थिया त ॿीहर हमिलो कंदासीं जंहिं लाइ तयारी करे वरिती आहे हमिलो जल्द बि थी सघे थो ईरान खे केर बि शिकस्त नथो ॾेई सघे त ईरान आज़ादी जे दिफ़ा लाइ मुकमल ताक़त सां विहण लाइ तयारु आहे नई दिल्ली में बर्क्स परडे॒ही वज़ीरनि जे इजलास खे ख़िताब कंदे ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राक्षी चयो आहे त 2 सालनि दौरान ईरान खे अमरीका ऐं इसराइल जे 2 वहशियाणनि हमलनि खे मुंहुं ॾियणो पियो आहे UAE बि ईरान ते हमले में सिधी रीति मुलवस हुयो ईरानी क़ौम कंहिं धमकी या दबाउ आॾो न चुकंदी मोहबत जो जवाब बि मोहबत सां ॾींदी
4: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का
5: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद
6: चेरी एयर कूलर जिसकी एयर थ्रो में है दम
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़

0: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3385-69
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320।

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kail. Jekade kudrati nikhar. Saaf naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: Apni remittance 19 February se 25 May ke darmiyan Bank Al Habib se vasool kare. Aur har mahine lucky draw mein shamil ho jaye.
3: Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो दी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बे डरंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836
6: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: जड़े माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे तो सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन एंड कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

टंगवाणी भरिसां नसीर शाख ते पुराणी कुल डहण दौरान किरी पई, टे पोहर ते दॿिजी फौत। ॻोठ शाहज़ैन ख़ान बिजाराणी में नसीर शाख जी पुराणी पुल खे मज़दूर डाहे रहिया हुआ त धमाके सां किरी पई। पुल ते कम कंदड़ टई मज़दूर दॿिजी फौत थिया। इलाइक़े वासियुनि हेवी मशीनरी जी मदद सां टिनी मज़दूरनि जा लाश ॿाहिरि कढिया। पोती पोहर ते ॾिसणाणा बबू बकर निंदवाणी, इमाम बख़्श उर्फ ख़ान निंदवाणी ऐं धणी बख़्श जाफरी जे नाले सां कई वई। इलाइक़े में सोग छायल। सिंध हुकूमत जो आबादगारनि खे भाण ते ॾिनल सब्सिडी वारा पैसा वापसि वठण जो फ़ैसिलो। सूबाई हुकूमत समूरनि डीसीस खे ख़त लिखी कणक न पोखींदड़ आबादगारनि खां पैसा वापसि वठण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सिंध हुकूमत चयो आहे त डीएपी जी रक़म वठी कणक न पोखींदड़ आबादगारनि खे 5 सालनि ताईं का बि सब्सिडी न ॾिनी वेंदी। कुझु आबादगारनि फी एकड़ ते 14,000 रुपया हासिल करण बावजूद कणक जी पोखी न कई। हुकूमत रजिस्टर्ड आबादगारनि खे फी एकड़ ते भाण जे मद में 14,000 रुपया ॾिना हुआ।

चीन अमेरिकी सदर के विच ओभर में जारी तकरार के निबेरे लाए तामीरी किरदार अदा करण की खातिरी कराए छी। चीनी सदर शी जिनपिंग सदर ट्रंप से मुलाकात दौरान ईरान के मामले से तामीरी किरदार की खातिरी कराई। शी जिनपिंग चयो अमेरिका से नवा बेतरफा लागापा कायम कया। सदर डोनाल्ड ट्रंप चवाए तो केतरा ही मसला हल कया जे बया हल ना कर सकन। असा चाहूं था आबदा हारबुस खुलल रहे ईरान वट एटमी हथियार भी न होजन। ईरान जो 90% दिफाई सिस्टम तबाह कर छो हाने वटस हमले की सलाहियत भी न रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर जो बयान अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स मूजिब अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारे की गुजरी रिपोर्ट में जाहिर थे तो ईरान की मिजाइल सलाहियत अजा भी बरकरार है। हाँ सरकारी मुलाजमन के असासन की निगरानी एआई जरिए थी। जांच जो इख्तियार एफबीआर वट हों सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के इख्तियार की नाणे ए टैक्स वसूली बाबत सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की ब्रीफिंग दी वही तो एआई से बदल सरकारी निजाम ऑफिसर्स की दौलत असासन में गैरमामूली वाधा से लागापियल इख्तियार अलर्ट जारी कर दिसंबर 2026 का 17-22 ग्रेड ऑफिसर्स जहां असासा डिजिटल डिक्लेरेशन सिस्टम जरिए अवाम आदो होंदा।

ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 हैं तोकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद आटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद आटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नजगरलस डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: 12:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hemay Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hemay Diamond Glow Bleach Cream.
2: अपनी remittance 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान Bank Al Habib से वसूल करें और हर महीने lucky draw में शामिल हो जाएं.
3: Bank Al Habib, रिश्ता भरोसे का.
4: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर आई

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: अपना शहर अपना घर महराबपुर और महराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

टंगवाणी भरसां नसीब शाख ते पुराणी पुल ठाहिण दौरान किरी पई, टे पर्यत दॿिजी फौत। ॻोठ शाहज़ैन ख़ान बिजाराणी में नसीब शाख जी पुराणी पुल खे मज़दूर ढाहे रहिया हुआ त धमाके सां किरी पई। पुल ते कम कंदड़ टई मज़दूर दॿिजी फौत थिया। इलाइक़े वासियुनि हेवी मशीनरी जी मदद सां टिनी मज़दूरनि जा लाश ॿाहिरि कढिया। पोती पर्यतनि जी सुञाणप अबूबकर नंदवाणी, इमाम बख़्श उर्फ़ ख़ान नंदवाणी ऐं धणी बख़्श जाफ़री जे नाले सां कई वई। इलाइक़े में सोग छायलु।

0: सिंध हुकूमत जो आबादगारनि खे भाण ते ॾिनल सब्सिडी वारा पैसा वापसि वठण जो फ़ैसिलो। सूबाई हुकूमत समूरनि डीसीस खे ख़त लिखी कणक न पोखींदड़ आबादगारनि खां पैसा वापसि वठण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सिंध हुकूमत चयो आहे त डीएफई जी रक़म वठी कणक न पोखींदड़ आबादगारनि खे 5 सालनि ताईं का बि सब्सिडी न ॾिनी वेंदी। कुझु आबादगारनि फी एकड़ ते 14,000 रुपया हासिल करण बावजूद कणक जी पोखी न कई। हुकूमत रजिस्टर्ड आबादगारनि खे फी एकड़ ते भाण जे बद में 14,000 रुपया ॾिना हुआ। सरकारी मुलाज़मनि जे असासनि जी निगरानी एआई ज़रिए थींदी। जांच जो इख़्तियार एफबीआर वटि हूंदो। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जे इख़्तियारनि जी नाणे ऐं टैक्स वसूली बाबति सेनेट स्टैंडिंग कमेटी खे ब्रीफिंग ॾिनी वई त एआई ते ॿधल सरकारी निज़ाम ऑफिसर्स जी दौलत ऐं असासनि में गैर मामूली वाध ते लाॻापियल इख़्तियारनि खे अलर्ट जारी कंदो। डिसम्बर 2026 खां 17-22 ग्रेड जे ऑफिसर्स जे असासा डिजिटल डिक्लेरेशन सिस्टम ज़रिए अवाम आरो हूंदा। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिनकीअ जी निशानदेही ते अबुल हसन इस्फानी रोड फ्लैट ते छापो। वॾी मक़दार में मंशियात हथ सचल थाणे ते केस बि दाख़िल कयो वियो। पुलिस मूजिब पिनकीअ जी निशानदेही ते बंदि पियल फ्लैट ते छापो हयो वियो, जितां मंशियात हथ आई। जांच दौरान पिनकीअ पारां बीमारी जी शिकायत ते संदसि मेडिकल चेकअप बि करायो वियो। इस्पताल ज़रिए मूजिब पिनकीअ खे गुर्दे ऐं मादे जी शिकायत ते इस्पताल आंदो वियो हो, जिते संदसि टेस्टूं कयूं वयूं।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर KTN News।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: किसानों के

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
3: दौरान ईरान जे मामले ते तामीरी किरदार जी ख़ातिरी कराई. शी जिनपिंग चयो त अमेरिका सां नवां ऐं बितरफ़ा लाॻापा क़ाइमु कया आहिनि. सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त केतिरा ई मसला हल कया आहिनि जेके ॿिया हल नथा करे सघनि. असां चाहियूं था त अपना हरमुस खुलियल रहे ऐं ईरान वटि एटमी हथियार बि न हुजनि. डोनाल्ड ट्रंप चीनी दौरो मुकमल करे वापसि रवानो थी वियो. ताक़त जो इस्तेमाल नतीजा न ॾींदो. ईरान जे एटमी प्रोग्राम समेत समूरनि तकरारनि जो हल मुशावरत सां निकिरणु घुर्जे. मसइले जो तकिड़ो हल अमेरिका, ईरान ऐं ॿियनि मुल्कनि जे मुफ़ाद में आहे. चीनी परदेही वज़ारत चयो आहे त तकरार जे निबेरे जे लाइ ॻाल्हियुनि ऐं राब्तनि वारो सिलसिलो बि जल्द बहाल थियणु घुर्जे. ईरान जंग शुरू ई न थियणु घुर्जे. हा, जंग जो जारी रहणु कंहिंजे बि मुफ़ाद में न हूंदो. चीन सदाई ॻाल्हियुनि ऐं सिफारतकारी खे ई हथी ॾिनी आहे.

0: वफाकी हुकूमत IMF खे नए माली साल जे बजट में बिजली ऐं गैस महांगी करण जी ख़ातिरी कराए छॾी। ज़रियनि जो चवणु आहे त हुकूमत बजट बाबति IMF सां ॻाल्हियूं करे रही आहे। IMF खे तवानाई शोबे में सुधारनि बाबति ब्रीफिंग ऐं नए माली साल बाबति हदफ़नि खां आगाह कयो वियो आहे। IMF खे ख़ातिरी कराई वई आहे त बिजली महफ़ूज़ करार ॾिनल वाफ़ेदारनि खां सवाइ ॿियनि जे लाइ बिजली ऐं गैस महांगी कई वेंदी। क़ीमतुनि जो भार वाफ़ेदारनि ते मुंतक़िल कयो वेंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सां चीन जे 11 रुकनी कारोबारी वफ़द जी मुलाक़ात। वज़ीर आज़म पारां चीन ऐं पाकिस्तान में कारोबार वधण ते इत्मिनान जो इज़हार। शहबाज़ शरीफ चयो त सदर शी जी क़यादत में चीन शानदार तरक़ी कई आहे। ॿिन्ही मुल्कनि में कारोबार जी वाधि सां आवाम खे फ़ाइदो थींदो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां विच ओभर बाबति अमेरिका जे नायब परॾेही वज़ीर पाल कपूर जी मुलाक़ात। पाक अमेरिका लाॻापन ऐं विच ओभर जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। मोहसिन नक़वी चयो त सदर ट्रंप जे दौर में पाक अमेरिका लाॻापा वधीक मज़बूत थिया आहिनि। विच ओभर में जारी तकरार जे जल्द पुरअमन हल जे लाइ बि पुरउमीद आहियूं। अमेरिकी नायब परॾेही वज़ीर पारां विच ओभर में अमन जे क़याम जे लाइ पाकिस्तानी कोशिशुनि जी साराह। मुलाक़ात दौरान अमेरिकी सफ़ीर ऐं ॿिया बि मौजूद हुआ। सिंध हुकूमत जो आबादगारनि खे भाण ते ॾिनल सब्सिडी वारा पैसा वापसि वठण जो फ़ैसिलो। सूबाई हुकूमत समूरनि डीसीज़ खे ख़त लिखी कणक न पोखींदड़ आबादगारनि खां पैसा वापसि वठण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सिंध हुकूमत चयो आहे त DAP जी रक़म वठी कणक न पोखींदड़ आबादगारनि खे 5 सालनि ताईं का बि सब्सिडी न ॾिनी वेंदी। कुझु आबादगारनि फी एकड़ ते 14,000 रुपया हासिल करण बावजूद कणक जी पोखी न कई। हुकूमत रजिस्टर्ड आबादगारनि खे फी एकड़ ते भाण जे मद में 14,000 रुपया ॾिना हुआ। तकरार जे जल्द पुरअमन हल जे लाइ बि पुरउमीद आहियूं। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिनकी जी निशानदेही ते अबुल हसन इस्फानी रोड ते पुलिस जो फ्लैट ते छापो। वॾी मक़दार में मनशियात थे सचल थाणे ते केस बि दाख़िल कयो वियो। पुलिस मूजिब पिनकी जी निशानदेही ते बंदि थियल फ्लैट ते छापो हयो वियो, जितां मनशियात हथ आई। जांच दौरान पिनकी पारां बीमारी जी शिकायत ते संदसि मेडिकल चेकअप बि करायो वियो। इस्पताल ज़रिए मूजिब पिनकीअ खे गुर्दे ऐं मैदे जी शिकायत ते इस्पताल आंदो वियो हो, जिते संदसि टेस्टूं कयूं वयूं। सरकारी मुलाज़मनि जे असां कणक जी पोखी न कई। हुकूमत रजिस्टर्ड आबादगारनि खे फी एकड़ ते भाण जे मद में 14,000 रुपया ॾिना हुआ।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 ऐं 02424601000।
5: This program is brought to you by
6: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
7: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि. एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर. वधीक राब्ते जे लाइ 0300 385 569 0300 3855 69.

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: It's 2:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधिक राबते जे लाइ 0383 5569

0: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन, एमए डीएचएमएस सिंध, आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह। हर अरबा, ख़मीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुझे दुकान जी बे डरंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-41-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा।
4: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94.

पंजाबी कुल परे दाह ब्या तक।

0: It's 3:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram, ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

0: वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0383-569-0300-33-8-55-69।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 03013992836।
9: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
10: रात बुधाए जा जेमे मां पंजे अंदर जी गाल कया मदीने वारे जे मीलाद में, त मुजो खुदा मुखे मदीने घुराए कहड़ी नात।

आसमुझी आका जियरे पुजायो रहमान है आस अब्दुल रहमान जी मौला जियरे पुजायो हे लहुसूर घुरायो साल थी व्या

क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया

0: के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
0: तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिनट ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: किसानों के आल

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: किसानों के आलम

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
4: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: खुशखबरी खुशखबरी, हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधिक राबते जे लाए 385-569-0300-33-88-5569।
7: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर, राबते जे लाए 0320-18-00-003।
8: अस्सलाम वालेकुम अदा।
9: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
8: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
9: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
8: न अदा।
10: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहराबपुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेहराबपुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
8: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
9: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
8: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
10: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नजगर डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर,
9: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
11: 0301-399-2836।
12: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94.

0: It's 4:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hamay Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hamay Diamond Glow Bleach Cream.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्ट

0: कोन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें पांच बैंक अलबीब से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
3: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
4: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलल गिरा जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग
4: ना जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 03013992836
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिनट ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: किसानों के आलम

0: इट्स 5 PM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़ आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94
7: तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है
8: मेरे बाबा ने मेरी बात पक्की कर दी है अब कुछ नहीं हो सकता अब हम कभी नहीं मिलेंगे मुझे माफ कर देना

0: जो मौसमियात है वो बार बार पेशन गोई कर रहा होता है कि जनाब 11 से 14 मई तक, 11 से 18 मई तक बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। हम बेचारे राह तकते रह जाते हैं कि बारिश कब होगी, कब होगी, कब होगी, लेकिन वो होने का नाम नहीं ले रही होती। लेते हैं शो की एक कॉल, देखते हैं कौन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। खालिक भाई जिलोरी का केड़ा हाल चाल, सब ठीक ठाक आयो, मजे में आयो? अल्हम्दुलिल्लाह मजे में। आज असा फैमिलीज वर्ल्ड फैमिलीज डे मनायूं था, माना था जेका खानदान गड रहन था हुआ तमाम घणा खुश नसीब आहिनि, जेका खानदान में सेपरेशन थी वञे थी, लड़ायूं थियन थियूं, अच्छा जेको आहे खुश असलूबी सां जेका सेपरेशन थींदी उहा त सुठी ॻाल्हि आहे, पर जेका लड़ाई झगड़ो करे ॿ फैमिलियूं जुदा थी वञनि थियूं, भाउ जुदा थी वञनि था पंहिंजे माउ पीउ खां, ॿाहिरि ॿाहिरि पाण खां जुदा थी वञनि था, त उन हवाले सां छा चवणु चाहियो था? ख़तम करे छॾियो न, कंफ्यूजन थींदियूं आहिनि, माना ॿाहिरि पाण में वेही करे, भेनरियूं पाण में वेही करे, माउ पीउ पाण में वेही करे उहा मसला सॉल्व कनि, उन्हनि खे वधाइनि न, उन्हनि खे ख़तम कनि। खानदान में कुझु अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जेके मसलनि खे वधाईंदा आहिनि, त पोइ उहा वधाइण वारा ख़तरनाक ॻाल्हि आहे न। जंहिंसां खानदान टुटी पवंदा
1: आहिनि।
0: बिल्कुल जनाब, इन ॻाल्हि खे न थियणु खपे, वेही करे पाण में उहा ॻाल्हियूं सॉल्व करियो ऐं पंहिंजे खानदान खे गॾु कयो, ईअं न?
1: थैंक यू।
0: हमारे साथ है जनाब खालिक भाई फ्रॉम जलूरी, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर, और इन्होंने कहा है कि जनाब हमें फौजिया सुमरो सुनवाएं, जरूर सुनवाएंगे जनाब, क्यों नहीं सुनवाएंगे। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: वाह वाह वाह, इरफान हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे हो इरफान
2: भाई? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताओ क्या हो रहा है गर्मा गर्मी में?

0: हैं आजकल?
1: मैं आपसे पूछने वाला था कि गर्मी कैसी चल रही है?
0: गर्मी तो बहुत अच्छी चल रही है और इतनी ज्यादा लग रही है ना मुझे, मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, मुझे तो पसीने ही नहीं खत्म होते मुझसे।
1: आज तो थोड़ी सी हवा चल रही है।
0: हवा चल रही है बट वो जो तपिश होती है ना वो तो है ना आधा।
1: हाँ बिल्कुल वो तो है, लेकिन जो पहले दो तीन
0: वो तो बड़ी खराब गर्मी थी, वो बहुत खराब गर्मी थी यार।
1: अच्छा हवा भी नहीं लग रही।
0: जी जी जी इरफान, ये बताओ आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, मतलब खानदानों का आलमी दिन, तो ये बताओ कि खानदान में जो सेपरेशन हो जाती है, बहन भाई से अलग हो जाता है, भाई बहन से अलग हो जाते हैं, माँ बाप से औलाद अलग हो जाती है, और मतलब मामू भांजे से नहीं बात कर रहा होता, चाचा भतीजे से बात नहीं कर रहा होता, तो ये क्या चीज है, कौन से सिम्टम्स होते ऐसे होते हैं जो कि हमें ये सब चीजें करने पर मजबूर कर देते हैं?
1: आजकल ना जो भी इंसान है उसमें मैं हूँ या आप है, लेकिन हमें थोड़ी सी भी बर्दाश्त नहीं है।
0: हाँ बिल्कुल ऐसे ही
1: है। हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है।
0: ऐसा ही है बिल्कुल।
1: हमें तो इतना ही कहूँगा, अगर डॉक्टर में कहेंगे आप, अगर सब फील्ड में जाऊँगा तो फिर तो ये बात बढ़ जाएगी।
0: हाँ बढ़ जाएगी बिल्कुल।
1: और फरमाइश तो आपके पास आ गई है, तो
0: फरमाइश ऑलरेडी
1: पता है कि सिंगर दूसरों को होता है तो सॉन्ग मेरा होता है।
0: अच्छा चलें बताएं, आज आप बताएं सिंगर दूसरों का सॉन्ग आपका।
1: फौजिया तुमरों का सॉन्ग है, जेके उदारिया मतोला पकिएगा, जमा खास के लिखी शायरी है, बहुत अच्छा सॉन्ग है।
0: ओके जेका उदारिया मतोला पकिए
1: जी, जेके उदारिया मतोला पकिया
0: हुआ मोदे मोदे अच्छी पता है हुआ पकी मोदे पाची व्यान।
1: इंशाल्लाह इन जुमलन में तांकि ये सॉन्ग मिली भी ना इस्ताक भाई,
0: मिली भी मुखे मिली भी हां हां जी तने के चाय मामा त मोदे पाची व्यान हुआ पकी।
1: ये सॉन्ग बुद्धि डिस्को पहुंचा मुख्य बुधाई जो से जो मुझे पसंदीदा सॉन्ग आए फौजिया तुमरे के आवाज में, वो केत्रो नाइट केत्रो सुठो सॉन्ग आए।
0: बिल्कुल बिल्कुल फौजिया सुमर लेजेंड गुलकार है सांजी। जी जी
1: जी
0: फौजिया सुमर सांजी लेजेंड गुलकार आहे, त यकीनी तौर ते उन जो सॉन्ग त की न बोलो दो।
1: बिल्कुल मां तो ये चंदम सारा जी ने बल्कि पूरी सिंध जी कोयल फनकार आहे।
0: बिल्कुल पाकिस्तान भर में दुनिया भर में उनके बुद्धि बुंदा जिते जिते सिंधी समझी में दिया है।
1: बिल्कुल जिते जिते सिंधी समझी में दिया है, गाला में दिया है, उते फौजिया तुमरे से बुद्धि बुंदो आहे। अज भी रेडियो पाकिस्तान पे जदे भी सिंधी मेगमा या कोई प्रोग्राम हलंदो आहे त उन में फौजिया तुमरो शामिल हुंदी आहे।
0: एग्जैक्टली
1: अगर ये स्टेशन न भी सही पर रेडियो पाकिस्तान मिठी हमेशा
0: हमारी शास्त्रिक बन जाती है वो, जब सलाद नहीं होती जिसमें हर चीजें शामिल होती है।
1: राय तुमरो मंताज तुमरो हाफिज गुलाम अहमद सांबल लुकमान चाचड़ हुसैन बख्शो फाइन विस्तड़ो बचन चम्बानी नजीर मंगीरो
0: वालेकुम अस्सलाम इरफान थे पांच खास ख्याल रखो। थैंक यू अदा सो मच।
1: थैंक यू
0: बेबी जनाब, हमारे साथ इरफान थे वो तमाम बुधी रहा हो जी एफ एम एटी नेटवर्क। असानी सिंधी भी हलंदी, असानी उर्दू भी हलंदी, अस पंजाबी भी गलायूं था, अस पश्तो भी गलायूं था, अस सम सम जो है बलोची भी गलायूं था। थैं छे हाल है, थैं जो हाल है, तुम असा के कॉल कर सको था 03000113488। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम साईं, छाला भा प्यारा।
0: हाय मुझे प्यारा भा, केर तो गलाय असा सबनी सा करें, किथा पियो गलाय?
2: अमीर बख्श मणार जिलो गोपकी मिश्री गोठ मा।
0: वाह वाह वाह, मिश्री जड़ा मानू असा सबनी सा गोड मौजूद है। अमीर बख्श साहब, गर्मी किए था गुजारियो?
2: बस साईं गर्मी दाडी काठन दे बगो रे तितरी गदा मज बाज प्रोग्राम बुदो रे जुमो नमाज पड़ी।
0: वाह वाह वाह वाह,
2: काठन जो टाइम थियो।
0: हां जबरदस्त, अबरी काठियो काठियन जे ट माने काठियो वडियो तव इंसान चौकस रहंदो आहे। अच्छा मुझा प्यारा भा अमीर बख्शियो, बुधायो त अॼुकल जेका खानदानन में लड़ायूं थी हणनि, खानदान सेपरेट थी वञनि था, अलॻि थी वञनि था, विड़न छो था भाई, ये कहड़ी वजह है जेका विड़न था?
2: अगे असन नंदा हुंदा से बाबा बाबा रचंदा बाप गुजारे वे, अगे मोहब्बत जाम हुंदी
0: आ नंदा वे की
2: आए जी कोने बस मानू शामो हण दो।
0: हां बिल्कुल बिल्कुल, मोहब्बत के वधाइण खपे, अपनायत के वधाइण खपे, अनाऊ खत्म करणी खपन, कूड़ खत्म खणो खपे, साड़ खत्म करणो खपे पाण मा, त यो मोहब्बत वधंदियो।
2: बिल्कुल मोहब्बत वधदो, बस इखलाक सा मानू हर मन सा तेज से वनी सिबर जो मन मिठो होंदो आ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अमीर बख्श बात आ, मीठा मीठा मानू आयो, यो बुधायो असा हाने तवा के मीठी मीठी फौजिया सुमरो बुधाइण वाला आयो, केन जे नाल त करण चायो?
2: प्यार दोस्त आला दाद मार मोहम्मद अली मार अब्दुल बंगवार बुद्ध बड़ो पठान खान पटके आरो
0: जी जी
2: इनाम मार ओके
0: ओके ओके ओके ओके ओके थैंक यू सो मच अमीर बख्श फ्रॉम घोट की। और जनाब हमारे साथ उन्होंने नाम लिया एक बहुत ही प्यारे से मतलब हमारे लिसनर है पठान खान पटके वारो जेको पठान खान पटके वारो असा के बुद्ध ही अथो पर असा के कॉल न थो करे मना असा के नाराज थी वाला है छो त पठान खान पटके वारो जिते भी है असा उनके याद क्यों था असा दा तमाम घना पुराना लिसनर है जी अचन ता असा सबनी सा पांजी गालियो शेयर कन। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी जनाब केर असा सबनी सा गद साले पट में भी ईअं गर्मी पई थी जिते जीअं सखर में पई थी उते त मुंहिंजे ख़्याल में वण आहिनि वण बि आहिनि वाहू बि आहिनि ऐं उते त जाम पाणी आहे आसे पासे में ईअं न कंहिंजे नाले करण चाहियो कंहिंजे नाले करणु चाहियो चले ठीक है थैंक यू सो मच इमाम बख्श भमरो साहब ओके ओके ओके सुबुह जो मुतुला पखी इरफान थेबो की फरमाइश है अमीर बख्श साहब की फरमाइश है जो असर फरमाइश कई है झलूरिया खालिक भाई की फरमाइश है तो बुध भाई खोड़ सारे इंजॉय किया।

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
2: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज़ अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: असांजा पाणी साफ़ न आहे, तंहिंजे करे त असां बीमार था थियूं। असांखे पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुरिजे।
1: केॾो सियाणो पुटु आहे मुंहिंजो।
0: बाबा, इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो।
2: साफ़ पाणी, महफ़ूज़ ज़िंदगी, दस्तनि खां बचा। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर। आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर। सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
6: न अदा।
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ई हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब होयो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
8: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
9: 0301-399-2836।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
11: ओ सनम सोनो जे साली
12: अली
11: अली नियनवारा किथे
13: जना खानदान अदम मसावात और बच्चों की फलाह व बहबूद के मरकजी मौजू के तहत मनाया जा रहा है। बिल्कुल जनाब, बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में, आप सबकी लाइफ में। और इंटरनेशनल फैमिली डे मनाने का मकसद बच्चों के घरों में बेहतर माहौल फराहम करना, और ये दिन इस बात को भी तस्लीम करता है दोस्तों कि बच्चों की खुराक और हिफाजत की बुनियादी जिम्मेदारी खानदान पर आयद होती है और ये सब चीज़ें हमें उनको प्रोवाइड करके देनी होती हैं एनी हाउ। और अपने बच्चों को बेहतर सेहत, बेहतर तालीम और बेहतर तर्ज जिंदगी फराम करना वालदैन की जिम्मेदारी होती है। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
14: वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? खैरियत है?
13: ठीक ठाक मेरे प्यारे से भाई, कौन हमारे साथ?
14: यार मीरपुर खास से आपका भाई बात कर रहा हूँ।
13: मीरपुर खास से मेरे प्यारे से भाई का नाम भी तो होगा ना कोई?
14: मेरा आपका भाई का

0: वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अली भाई आपने तो वाकई दिल जीत लिया, थैंक यू सो मच। और ये किसके नाम करना चाहेंगे?
1: यार मैं तो जितने मेरे भाइयों सुन रहे ना, आपके स्पेशल स्टॉक भाई के नाम।
0: थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अली भाई, और हर जुमे के जुमे हमारे साथ आया करें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जनाब मीर प्रकाश से अली ब्रोही भाई, और अली ब्रोही ने कहा कि अतौल्ला का सॉन्ग चलाएं। तो बिल्कुल जनाब, आपकी फरमाइश सर आंखों पर, आपका अपना अशफाक आपके साथ मौजूद है। 5:41 हुआ चाहते हैं और थोड़ी देर में 42 भी हो जाएंगे, 43 भी हो जाएंगे, इसी तरह टाइम गुजरता जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि गुजरते टाइम के साथ आपके साथ हमारा कनेक्शन और ज्यादा मजबूत होता जाए, आपके साथ हमारा कनेक्शन और ज्यादा मजेदार होता जाए। तो जनाब देर किस बात की है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488। जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है वहां वहां तक के तमाम दोस्तों को हम यही कहना चाहते हैं, जनाब जल्दी से आ जाइए, अपने मैसेजेस भी हमारे साथ शेयर कीजिए जनाब, और हमारे साथ बातें शातें कीजिए और अपने मैसेजेस दीजिए जनाब, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जब आएँ तो बड़े धड़ल्ले के साथ आएँ, बड़े मज़े के साथ आएँ। तो आप हमारे साथ यूं ही रहें और इंजॉय करते रहें हमारे शो को, जिसका नाम है आई लव यू ऑल। और जनाब हमारा नंबर वन सेकेंड आपकी समातों की नज़र करता चला, 03000113488 हमारा नंबर है, और हम आपके साथ हैं शाम के 7 बजे तक। आज इंटरनेशनल फैमिलीज डे मनाया जा रहा है, खानदान और वालदैन और दीगर देखभाल करने वाले बच्चों की बहबूद और उनकी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं जनाब। वो बच्चों की पहचान, उनको पहचान, मोहब्बत, देखभाल, रिस्क और तहफ़ फराम करते हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है और वो बदरजा अतम इस पर पूरा उतर भी रहे होते हैं। कौमी समाजी पॉलिसियों और समाजी सरमायाकारी के पैकेजों के एक अहम हिस्से के तौर पर खानदान और वालदैन के लिए तआवुन, जिसका मकसद गुरबत को कम करना, अदम मसावात को कम करना और मजबूत फलाह बहबूद को फरोग देना है, बच्चों के हकूक के कन्वेंशन के रूह के मुताबिक दिया जा रहा है। बिल्कुल जनाब, और बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना हम सब की अवलीन जिम्मेदारी होती है, उनको बेसिक सहूलतें देना हमारी जिम्मेदारी होती है और ये हम सब को पूरी करनी चाहिए। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
2: हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: के रसा सबनी सा गरदा
2: शामीर अली चाचर पनवाकिल का गला जो सुन।
0: शामीर चाचर फ्रॉम पनवाकिल, केरा हाल चाल है शामीर भाव?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जैसा लगा कहनी माल के दी मेहरबानी लगी पे आ ता पांच हाल बतायो ता
0: माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है माशाल्लाह। तमा भारन जी दुआओं सा सबनी सा गद मौजूद आहिन, यो बुधायो छा कंदा शामीर भाव?
2: पांजी जमीन आए, जमीन जो कमकार कंदा हूं।
0: अच्छा माशाल्लाह, त की हाले तो ता जो कमकार?
2: कमकार तमाम बेहतर है, सुचो हाले जी।
0: आई इन दफा तमा जमीन ते छा माना पोखियो आप?
2: पोखियल पेना ने कणक होई वा, कणक खणी आ से आने सो कमंद पोखियल आए से।
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। ये बुधायो त ता के असो शो के लगंदो आ GFM 88 नेटवर्क जा सब शो के लगंदा है? अली ब्रोही भाई जी वो गानो प्ले कयो, कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो?
2: असांजे पीरी प्यारो भाउ लुकमान चाचर आहे, बाबू अदील अबड़ो साहिब आहे, अब्दुल्ला बंदवार आहे, इमदाद अली शाह आहे, जेके पीरी प्यारा भाउर ॿुधनि पिया ऐं असांजी भेनरूं ॿुधनि पियूं,
0: पनवाकिल से हमारे साथ आए, मीर खास से हमारे साथ आए, और जनाब हमारे साथ हर जगह से हमारे साथ तमाम लिस्टनर्स आ रहे हैं। तो

0: अच्छी बात है, लेते हैं शो की एक और कॉल। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: के रदा सा सबनी सांग गद
1: गोठ पुन्ना साल पर खैर रुस्तम अली पर।
0: रुस्तम भा के हाल चाल तो बताने, गोठ वाला सब खैर में आनम।
1: शुक्र
0: आला रुस्तम छा कंदो आ भा
1: बनी बारे जो कम कंदा हूं।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, की हले तो तां जो बनी बारे जो कम पेटला त माण्हू गर्मी में कमु कंदो आहे, भला हाणे छा कयूं, ईअं न यार, कोई दुआ बुआ घुरो त कोई बारिश वारिश थिए, कोई मौसम चेंज थी वञे। जी रुस्तम भाई ॿुधायो, गानो हलायां थो कंहिंजे नाले सां करणु चाहियो?
1: दिलीप कुमार मेंघवाल, मलिक मोहम्मद बलोच, मुनीर अहमद सियाल, कुर्बान अली खासकेली, चोवन कुमार कोली।
0: सही। रुस्तम भाई, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो। ओके, हमारे साथ रुस्तम भाई, रुस्तम भाई के लिए हम गाना प्ले करेंगे और ब्रेक के बाद अताउल्ला प्ले करते हैं। आप इस वक्त ब्रेक को एंजॉय कीजिए।
2: मोरो नौशहरो मीरपुर खास।
3: सखर की जानिब से

0: जनो वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से हम आपके और आप हमारे साथ मौजूद हैं। चीर भी आख तेरी पतला लक तेरा शाला माने जवानी, और बहुत प्यारा सा गाना हमने आपकी समातों की नजर किया। अली मोहम्मद रोई की फरमाइश पर लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुझे प्यारा भा, केर प्या गलायो के था प्या गलायो। हाँ जी जी, हाँ जी जी, तां जी प्यारन भाइन जी दुआओं सा सबनी संगने लड़काने वाला की है। मुझे यार लड़काना में तमाम घणी गर्मी पई थी,
1: लाड़काना में बाबर पापा दादी गर्मी आ रात थदी आ, बाकी लाड़काना वाला तो याद करे कर चक्कर ज्ञान से पाग बाकाल न तो हणे।
0: अच्छा मां काल हणे खई आ बाबा, ता जी शिकायत दूर थी वई हुंदी यकीनी तौर पे।
1: इसका खुदा रोज अचना बाबर शेख भी छदे हो
0: हैं नन, बाबर शेख छली न वियो थी आ बा काली वियो
1: केवे तो मां छो न कनम रात अलग दा छो अजे
0: अलैया मके खबर ना है, पर इंशाल्लाह ताला तां संग गदा इंदो तां संग छो न बाबा।
1: सरमन से दिए गालो गुजरा इसका खाद है,
0: सरमन से दिया जो
1: बेकदरन के छदे गाने अल बोला दे लदे।
0: अल्लाह हु अकबर, बेकदरन के छदे छदे
1: आने अल बोला दे लदे।
0: हां छदे छदे
1: ओके, कुछ दोस्त बंदा
0: हाउ हाउ बधायो कहन ना से करना चाहो।
1: चाची वो फातिल भाई जी पे कटबर बुलावल कटबर
0: आए इसका खुदा। हाय थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच, थैंक यू पांजो खास कैरेक्टर आसिफ फ्रॉम लड़काना। जनाब आसिफ भाई हमारे साथ थे लड़काना से, बेकदरन के छरे छरे सरमत सिंधी का देखते हैं जनाब ये गाना, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब हम अपने कॉलर को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो
0: हेलो जी जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: हां भाई मां हबीबुल्ला सोलंगी दो गल
0: है। हबीबुल्ला सोलंगी साहब केड़ा हाल चाल तव हबीबुल्ला भा? हेलो जी जी, आवाज अचे थी?
2: हां सही असा अंबियो केड़ा हाल सही खुश आओ?
0: ठीक ठाक हबीबुल्ला भा, छा कंदायो?
2: असा यो बनी बारो यो कंदाऊ यो वण जो फसल कंदाऊ।
0: ओके ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, हां जबरदस्त। तां जो कामकार किए तोले
2: चाहो
0: जनाब हबीबुल्ला भाई, और हबीबुल्ला भाई की फरमाइश भी हम प्ले करेंगे और आसिफ की फरमाइश भी हम प्ले करेंगे। अब जनाब क्या करते हैं कि हम चलाते हैं एक जबरदस्त सा गाना, हम दो कॉल ले चुके हैं और चले जनाब एक और कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद गाना चलाएंगे, ठीक है ना? जैसे आप खुश जहाँ आप खुश, लेते हैं रुकिए एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
0: वहीद वफा जतोई, केड़ा हाल चाल तब ठीक ठाक आयो?
3: शुक्रा शुक्रा, बस तां जी आवाज अंदाजो के शुक्रा जन हफ्ते जो वडो इंतजार हुंदा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू सो मच।
3: आज मैं एकरी सलाह जा नाराज न थी जो छंछर आचर कयो टेडी त कयो ने बाबा।
0: हां ट्रेडिंग कयो
3: बिल्कुल कयो यार, ब्लैक घंटे छा थिंदो असा के सा आचर ने त कयो सलाह सा
0: कुछ मौसम वाकई सही है। इो बुझा सरम सिंधी जो गानो तो हलाया हलबो हाँ लड़े लड़े तो कहते नारा था करना चाहो जी सिंधी में नालो
3: तव्हांजो
0: पैगाम पुॼी
3: वियो आहे। इश्ताक शेख साहब खुद सारा सलाम आबाद जेके बुधन था वफा अब्दुल वहीद जेके पर सलीम सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम थैंक यू वफा वहीद साहब थैंक यू हमारे साथ वफा वहीद और अब गाना प्ले करते हैं जनाब देर नहीं करते इस गाने को सुनिएगा हमारे साथ रहिएगा हम वापस आते हैं जनाब इस ब्रेक के बाद

0: is 6 PM. This time check is brought to you by.
1: जने माँ पांजो ख्याल रखन्दी आहे, तस्सेहत नस्लन ताई हलन्दी आहे. ही पेगाम कश फाउंडेशन आई कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो.
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज.
2: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.

0: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: इरशाद ऑटोस एंड होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद एं बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस एं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे, सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राबते जे लाए 03201800003।

الله الرحمن الرحيم.

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज न करियो। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: ख़बर न आहे, मां हर वक़्तु एॾी थकियल थकियल छो हूंदी आहियां।
3: तूं खाईंदी छा आहे? स्कूल में बाक़ी ॿारनि जी मंझंदि जी मानी ॾिठी आहे।

0: बच्चे ने तताओ ने के रोज अंडा खारा जो मंझन जी मानी में सूफ दी जो तजियो स्कूल में मुआगुर थकेला थकेला ना हो जे।
1: बारन में कमजोरी अक्सर जरूरी गिजाई जुजन जी घटताई हुंदी आहे जेका उनन जे सिखण जी सलाहियत में रंडक बणजे थी। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।

0: अस्सलाम वालेकुम। न तो छा कजे
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी।
1: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
0: अदा जल्दी कर मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरा पर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
4: आवाज थोड़ो कटजे पयो मुझा मिठा भा मुझा सजन साईं थोड़ो आवाज कटजे पयो सिग्नल जे तरफ वने मुखे वरी बुधा त डॉक्टर साहब भी समझे मां भी समझा
5: ठीक असान जी बहन आ उनके अखिन में सुरा गालदन ने के छतो संजो निगा दवा बम टाइम न थई करे।
4: अच्छा अखियुनि में सूर आहे दवाउनि जे बावजूद बि नथो छॾे। सुभाणे छंछर जो ॾींहुं आहे, चेक अप फीस डॉक्टर जी फ्री आहे। आऊं तोखे इहो मशवरो ॾींदुसि, अधी खे सुबुह सां वठी आ 10 बजे डॉक्टर साहिबु पुॼी वेंदो आहे। वधीक एफएम ॿुध, डॉक्टर साहिबु तोखे ॿुधाईंदो कोन को हिन महिल ॾस ॾींदी, पर फस्ट एड हूंदी अलाह सां कंदो इनशाला अधी जी सिहत याब थी वेंदी। ॿुध एफएम ॿुध जी
6: जेसिताईं जेकॾहिं तकलीफ़ पुराणी आहे त मां बहितर प्रेफरेंस ॾींदा आहियूं त हुनखे रूबरू ॾिसी छॾियो, अखियुनि जहिड़ी ॻाल्हि आहे त हुनखे रूबरू ॾिसी ऐं पोइ दवा रिकमेंड कंदा आहियूं या वरी जेको मसइलो हूंदो आहे उनजो हल कढंदा आहियूं। ठीकु आहे साईं,
4: दवा वग़ैरह वरिती आहे पर को फ़र्क़ु न आहे,
6: रूबरू ॾेखारनि त वधीक बहितर।
4: पोइ छा साईं वांगुरु तॾहिं फ़र्क़ु कनि जॾहिं अमर करो हुनखे। कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, कॉल जी तरफ़ वेंदासीं। अस्सलाम वालेकुम साईं, मुंहिंजा केरु साहिबु ॻाल्हाए पियो? हा हुकुम करे भाउ, असांखे छा पुछंदो डॉक्टर साहिब खां? अच्छा निंड कोन थी अचेसि, ब्लड प्रेशर चेक करायो अथईसि? अच्छा घणो बीठो
5: अथसि?
4: 180। पाण 180 ते केॾा निंड ईंदी, हेॾो जो वधियल हूंदो ब्लड प्रेशर कंहिं माण्हू खे निंड ईंदी? हा एतिरो ब्लड प्रेशर जो वधियल हूंदो तोखे ई निंड कोन ईंदी 180 ते। इलाज कराए कराए बीठो आहे, हलियो आहे सुबुह जो डॉक्टर साहिब खे अची ॾेखार, इनशाला डॉक्टर खां इलाज करा तयारु थी वेंदो बाबो तुंहिंजो। ॿुध एफएम ॿुध, डॉक्टर साहिब खे ॿुधाईंदो जी सर।
6: जेसिताईं बिल्कुलु ब्लड प्रेशर वधियल हूंदो आहे त ज़ाहिरी आहे त दिमाग़ु ॿधियल हूंदो आहे। इन जे करे हिकु त जेसिताईं असां वटि अचे चाचो त लूणु हुनजो बिल्कुलु बंदि कयो, मानी बिल्कुलु फिकी जेको आहे सो खाइणु घुरिजे। भाॼी जेकॾहिं गिह में खाइनि था त भाॼी तेल में खाइनि त ॾिसो कुझु दवा असर कंदी आहे ऐं अधु खां मथे मां चवंदो आहियां त परहेज़ फ़ाइदो ॾींदो आहे। जेकॾहिं परहेज़ तव्हांजी न हूंदी, कहिड़े बि मुतबर डॉक्टर खां दवा वठंदव त फ़र्क़ु तव्हांखे कोन पवंदो। इन जे करे परहेज़ तव्हांजी तमामु ज़रूरी आहे। लूणु बंदि करिणो आहे, गिह बंदि करिणो आहे, तरपच बंदि करणी आहे, खटियूं शयूं बंदि करणियूं आहिनि ऐं मथे खां 2 विहाणा रखी ऐं हुनखे जेको आहे सो आराम करणु घुरिजे। पाणी ज़्यादा इस्तेमालु करणु घुरिजे ऐं अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो ॿियूं बि खोड़ सारा असबाब आहिनि। रुगो हिकु त परे खां पेशंट खे अहिड़े तरीक़े सां ॿुधाइण लाइ की जॾहिं पेशंट साम्हूं ईंदो आहे, हुनजी हिस्ट्री वरिती वेंदी आहे, हुनखे ॾिठो वेंदो आहे, उनखां पोइ हुनखे दवा ॾिनी वेंदी आहे त उहो पेशंट बिल्कुलु ठीकु थींदो आहे। उनखां पोइ हुनखे दवा ॾिनी वेंदी आहे त उहो पेशंट बिल्कुलु ठीकु थींदो आहे। लेकिन हीअ कुझु एहतियाती तदाबीर

0: आहियां।
1: बिल्कुलु सही आहे। इहो खानदानी वार छणंदा अथव या जेको सिर्फ़ तोसां मसइलो आहे? कुझु खानदानी बि आहे। ॿुधो एफ एम ॿुधो, डॉक्टर साहिब खे ॿुधाईंदो न त डॉक्टर साहिब वटि इलाजु मौजूदु आहे। तव्हांजा वार किरण बि बंदि थी वेंदा, हथो नवां वार जेको आहे तव्हांजा फुटणु शुरू कंदा। डॉक्टर साहिब वटि इन जो इलाजु मौजूदु आहे। वधीक एफ एम ॿुधो न त रूबरू ॾेखारे वञोसि त बहितर थींदो।
2: बिल्कुलु सही, त जेको आहे इलाजु बिल्कुलु मौजूदु आहे ऐं होम्योपैथिक जे दवाउनि वसीले ई इलाजु मौजूदु आहे। ऐं पहिरां हिक त मां सभिनी उन्हनि भाइरनि खे, दोस्तनि खे, भेनरुनि खे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं त जेके वेंझी ईंदा आहिनि ऐं पोइ वठ वठां जेको आहे कंदा आहिनि मालिश जी, या मालिश ज़ोर सां पहिरां राति जो घणा चंपी ॾियारींदा आहिनि, त इहो जेको ज़ोर सां मालिश करणु आहे इहो वारनि जी जेकी जड़नि खे वधीक टोड़े छॾींदो आहे। इन जे करे फिंगर टिप्स तव्हां ॿुधो हूंदो, सिर्फ़ु आङुरनि जी हल्की हल्की हुन में जेको आहे सो मसाज कबी आहे, जंहिंसां सर्कुलेशन ब्लड जेकी आहे सो वारनि में अचे ऐं उन सां जेको आहे सो वार टुटंदा न आहिनि, वरंदो उन में नओं रतु जेको आहे सो गर्दिश कंदो आहे ऐं उहो वधण जे तरफ़ ईंदो आहे। ऐं छो था टुटनि, उन जा खोड़ सारा असबाब आहिनि, दिमाग़ जी कमज़ोरी हूंदी आहे या कुझु अहिड़ियूं दवाऊं माण्हू इस्तेमालु कंदो आहे जंहिंजा साइड इफ़ेक्ट्स हूंदा आहिनि, या ख़ानदानी अढ में जेको आहे सो ईअं हूंदो आहे, या कुझु खाधनि जी कमी जे करे या कुझु खाधनि जी ज़्यादती जे करे इहे मसाला हूंदा आहिनि। उहो मरीज़ जॾहिं साम्हूं ईंदो आहे त उनखे पोइ दवा ॾिनी वेंदी आहे त उहो ठीकु थी वेंदो आहे। सो इन जे करे अधे खे बि मशवरो ॾींदासीं त रूबरू ॾेखारे ऐं पोइ ई जेको आहे सो दवा वठूं।
1: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि चई मेरा पर एफ एम 94 तव्हांजी ख़िदमत में लाइव पेश कयो पियो वञे। डॉक्टर साहिबु हर अरबा ख़मीस जुमे छंछरु आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोठड़ी मोहम्मद कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। कहिड़ी बि बीमारी हुजे उनजो डॉक्टर साहिबु इलाजु कंदा आहिनि। का बि बीमारी लाइलाज नाहे, कॾहिं बि मायूस नाहे थियणो, भली अधरंगी वारो हुजे, गुर्दन जो इन्फेक्शन हुजे, चेहरे जो रंग सारो हुजे, चेहरे जी ख़ारिश हुजे, फट फुरड़ियूं, स्किन जा जेके बि प्रॉब्लम हुजनि, दर्द हुजनि, या जेको आहे सो ॿारनि में कदु जो न वधणु, जिन ॿारनि जो कदु नथो वधे, औरतुनि में वज़न जिन जो नथो वधे, या जिन औरतुनि जो वज़न वधी वञे थो उनखे वज़न घटाइणो आहे, औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी, पिते जी पथरी, बवासीर यानि पाइल्स ऐं इन खां अलावा नक जी हॾी वधियल हुजे, गले जा गुदूद हुजनि या प्रोस्टेट जेको गुदूद थिए थो इंसान खे, उन्हनि जो बग़ैर ऑपरेशन जे डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। 0301-2196-851 लाइव कॉल जो नंबर आहे। कॉल जी तरफ़ वेंदासीं, ॾिसूं किथां जो कॉलर हूंदो। अस्सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम
1: सलाम। तव्हां ॿुधायो, मुंहिंजा साईं केरु पियो ॻाल्हायो? हाणे तव्हां ॻाल्हायो या नंढड़ी खे ॻाल्हायो?
2: बीमारी या जेको आहे सो जान सां को ॿियो मसइलो हूंदो आहे, रूबरू ॾिसी करे उनखे दवा ॾिनी वेंदी आहे। बाक़ी फ़िलहालु अधे खे इहो मशवरो ॾींदासीं त रोज़ाना राति जो 10 दाणा बादाम, 10 दाणा ईराणी चणा राति जो पाणी में पिसाए रखनि, सुबुह जो नेराणे उनजे खल लाइ चॿाड़े छॾनि। इनशा ताला उन सां बि काफ़ी अफ़ाको थींदो, लेकिन रूबरू ॾेखारण सां जेको आहे सो दवा जे रस्ते जेकी ट्रीटमेंट कंदासीं उन सां बि इज़ाफ़ी फ़ाइदो थींदो।
1: असीं दोस्तनि खे इहा ई गुज़ारिश कंदा आहियूं त जॾहिं बि तव्हां कॉल करियो था प्रोग्राम में, तॾहिं तव्हां हिकिड़ो पंहिंजी शनाख़्त खणी था अचो, तव्हां पंहिंजो किरदारु खणी था अचो। कॾहिं कॾहिं ईअं थिए थो, कुझु दोस्त उन उते बि कॉल कंदा जिते कुतनि जो आवाज़ु ईंदो, किथे निंडनि जो आवाज़ु ईंदो, किथे गॾनि जो आवाज़ु पियो पासनि खां ईंदो, किथे गाॾियुनि जो ट्रकुनि जो आवाज़ु पियो हूंदो, पर ईअं नाहे। मुंहिंजा भाउ, ही मीडिया आहे, तव्हांखे दुनिया ॿुधे थी ऐं तव्हां हिकिड़ो पंहिंजो किरदारु खणी था अचो, तव्हां पंहिंजी शनाख़्त खणी था अचो। इंसान जा जेके लफ़्ज़ हूंदा आहिनि उहे इंसान जे ख़ानदान खे ज़ाहिर कंदा आहिनि, उनजी अहमियत खे ज़ाहिर कंदा आहिनि। तंहिं करे अव्हां जॾहिं बि लाइव कॉल ते अची करे ॻाल्हायो, सुठो ॻाल्हायो, बहितर ॻाल्हायो, जेको अव्हांजो हुस्न इख़लाक़ आहे उनखे ज़ाहिर करे थो। प्रोग्राम में कॉलर लाइन ते मौजूद आहे, कॉल जे तरफ़ वञूं पिया। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम सर।
1: जी मुंहिंजो साईं, केरु था ॻाल्हाए पियो?
0: बशीर अहमद अब्दुल जलील।
1: ख़ुशि आमदीद चऊं।

0: छा
1: थो मैं सर। जी जी मुझे भा खुश आमदी चों था वा के छा पुछंदा डॉक्टर साहब का।
0: अरे रात जो मानी खाई कमा दो टंकी में एक तो पट शुरू थी वनी।
1: अच्छा शुगर वगैरह टेस्ट कराया?
0: हां शुगर भी सही आ माना पट साना ही उन में रुको जोर जा दो जो पा माना जोर जा दो जो कच्चो जारो न तो छदे।
1: अच्छा कच्चो जारो न तो छदे पयो हेपेटाइटिस चेक कोन कराई होंदी?
2: रूबरू ॾेखारे वञनि त वधीक बेहतर रहंदो।
1: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि चई मेहरापुर FM 94 जो आवाज़ तव्हांजे समातुनि में पहुचे पियो। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहब असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन गुर्दे पिते मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे इलाज कयो वञे थो। पायल्स आहिनि उन्हनि जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कयो वञे थो। संदन जोड़न गोडन जो सूर नक कन गलो पुरानो नज़लो निछू मथे जो सूर अध मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर शर दिलि जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जो सूर मादे जी अल्सर त्री जो वधणु जिगर हेपेटाइटिस बी सी जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। काल जी तरफ़ हलूं पिया। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ कटिजे पियो मुंहिंजा साईं। आवाज़ कटिजे पियो। हा हुकुम कयो छा पुछंदा? अधे जो आवाज़ माज़रत सां सम्झ में न पियो अचे तंहिं करे मजबूरन सां ई ॻाल्हि करणी पवंदी आहे जॾहिं बि आवाज़ सम्झ में न ईंदो। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहब सिंह जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर असांजे स्टूडियो में मौजूदु। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
1: साईं। मुंहिंजा केर साहब ॻाल्हाए पियो?
3: मोहम्मद खान मैसर कोट क्या तो मैसर को।
1: जी जी खुश आमदी चऊं था मैसर साहब। छा पुछंदा डॉक्टर साहब का? अच्छा जंगन में सूर थो पए। ॿुधो FM ॿुधो डॉक्टर साहब खे ॿुधाईंदो या रूबरू ॾेखारे वञो भा?
3: जी
1: जी डॉक्टर साहब
2: जैसे बिल्कुलु एसाबी कमज़ोरी जी अलामत आहे ऐं एसाबी कमज़ोरी में जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी तकलीफ़ थिए थी त मां हिकिड़ो टॉनिक ॿुधाईंदो आहियां त जेके खजूर आहिनि रोज़ाना राति जो पंज दाणा खजूर जा खीर में ॿ तरीक़ा आहिनि। हिकु त या त खीर में राति जो ग्रैंड करे जूस ठाहे पी सघो था वरना राति जो पंज दाणा या सत दाणा खजूर जा राति जो पाणी में पिसाए रखो। सुबुह जो नेराणे उनखे मसले ऐं जेको आहे सो या कप छाण करे या जूस कढ़ी उहो पाणी पियो। राति जो जेको आहे सो पिसाए रखो त सुबुह जो पियो। जेकॾहिं सुबुह जो पिसाए रखो था त राति जो पियो। इनखे नबीज़ चइबो आहे ऐं हीअ नबी करीम सां सम्झनि जी सुनत आहे। उहा काफ़ी जेको आहे सो अलाह ताला जी महिरबानी सां शिफ़ा ॾिए थी। उहो बि इस्तेमालु करे सघो था वरना होम्योपैथिक में जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ते उनजो इलाजु मौजूदु आहे।
1: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि चई मेहरापुर FM 94 तां लाइव पेश कयो पियो वञे। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहबु प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु जेकी तव्हांखे लाइव कॉल ज़रिए टिप्स ॿुधाए रहिया आहिनि। कॉल जी तरफ़ हलूं पिया। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम साईं।
1: साईं मुंहिंजा केरु साहबु ॻाल्हाए पियो? हा जी सियाल साहबु छा पुछंदा डॉक्टर साहब खां? जी अदा
0: हा जीअं ई गर्मी शुरू थिए हा मां जुड़े पाणी लाइ
1: तव्हां अॻ में बि पुछो हो पोइ डॉक्टर साहिब खां दवा वठी विया आहियो?
0: न साईं पुछो
1: अठाक में मथे सूर जो पुछो हुयो। पुछो त हुयो तव्हां मूंखे यादि आहे।
0: तव्हांजो
1: मोहबत आहे न असां त नौकर हूं तव्हांजा खाधे में तव्हांजा
0: भाउ
1: असांजा पुछो डॉक्टर साहिब खां पुछो पुछो
2: जलन है एक तो खोड़ सारा असबाब हूँ एक तो चाहिए रात के टाइम में कारी ट्रक रात जो सत दाना पानी में पिसा रखो सुबह जो नेरा ने खाए वो पानी पी छो इंशाल्लाह ताला शिफा दी उन रोजाना रात जो जैतून जो तेल जरूर जैतून जो तेल जो याद कर जैतून जो तेल तरन के जो है सो जरूर लगे कर उन तरन की जी भी जोड़न जो मसलो है या तरन जो मसलो हों काफ़ी बेहतर हद तीन सही थी वो है या अड़े किस्म के मरीज के मैं चाहता ब ड्रॉप जो नाफ हों दुन हों उनमें तेल वजन से भी काफ़ी अफाको अची वो है जी साईं
1: पुलवामा हिस्से की गाल जी मेहरापुर एफ एम 94 जो आवाज़ अवे समातुन में पहुंचे पे डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब असि स्टूडियो में मौजूद हैं जी अवे के सेहत बाबत मालूम दे रहा है डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 वगे तीन जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीजन जो इलाज कह 0301-9194-851 अवे कें भी वक्त राबतो कर सको असा मालूम वी सो सेहत बाबत कॉलर लाइन से मौजूद है अस्सलाम वालेकुम वाले सलाम दुआ अलहमदुल्ला केर साहब गलाए पयो
4: आमिर गाड़ी तो गलाए आरानी मां
1: हां जी आमिर गाड़ी छ पुछंदो डॉक्टर साहब का
4: डॉक्टर साहब आयो तो पुछो बाबे जी तबीयत सही नथी रहे निंड कान दिए थे भई
1: अच्छा मेहरापुर का गलाइंदो वेजो सुबह जो दिखारे वन डॉक्टर साहब के वधिक बेहतर थिंदो बाबा इन जो प्रॉपर इलाज मौजूद है चेकअप फीस है फ्री है सुभाने छंछर जो दिया छंछर आचर जुमे दे फ्री होनी डॉक्टर साहब जी
4: जी जी हां अमी जो वजन भी वडो थियो
1: वजन वडो दे दिखारे वन सुभाने ठीक है बाबा
2: जिसे बिल्कुल आराम जे वाले सा खशखाश जको असो चने रोजाना रात जो अध चम्मच खीर में काड़े ऐं खीर पीअण सां काफ़ी आदत ऐं सुकून अची वेंदो आहे वरना उनजा खोड़ सारा असबाब हूंदा आहिनि इन जे करे बहितर इहो आहे त रूबरू ॾेखारे ऐं उनजी ट्रीटमेंट कराए
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी मेहरापुर एफ एम 94 जो आवाज़ तव्हांजे समाज में पहुचे पियो डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहे डॉक्टर साहब जो ख़ास महिरबानी आहिनि मोहबत आहिनि पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी असांजे स्टूडियो में ईंदा आहिनि होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन गुर्दे पिते मसाने जी पथरी जो माहिर जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कनि था पाइल्स पवासिर वग़ैरह उन्हनि जो बि बग़ैर ऑपरेशन जे डॉक्टर साहब कामयाबु इलाज कंदा आहिनि 0301-9194-851 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे कॉल जिते वेंदासीं पर इन खां पहिरीं अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त का बि बीमारी लाइलाज न आहे अव्हांखे मायूस न आहे थियणो अव्हांजा हथ सड़नि था अव्हांजा पेर सड़नि था या जेके भी बीमारियूं आहिनि का बि बीमारी लाइलाज न आहे अधरंगियारो आहे हिकु जॻह ते पइजी वियो आहे उनखे केर बि उथारण वारो न आहे अलाह सांजी ज़ात शिफ़ा ॾियण वारी आहे डॉक्टर साहिबु वटि अचो डॉक्टर साहिबु इलाजु कंदो कॾहिं बि अव्हांखे मायूस न आहे थियणो या पिते जी पथरी वारो उनखे डॉक्टरनि जवाबु ॾेई छॾियो आहे कोई परेशान आहे को उमिरि दराज़ आहे उनजो ऑपरेशन नथो थिए उन्हनि खे बि परेशान न आहे थियणो डॉक्टर साहिबु वटि अचो इलाजु करायो अलाह सांजी ज़ात शिफ़ा ॾींदी कॉल जी तरफ़ वञूं पिया अस्सलाम वालेकुम
5: وعلیکم السلام سائیں خوش آیو کہرا
1: شکر الحمدللہ کی صاحب گلائے پیو
5: سائیں ماما تو سورے دا علانی روڈ ما بدرو
1: خوش آمدید چوندا منجا بھا چھا پچھندا ڈاکٹر صاحب کا
5: سائیں ار بھی چنتا وے تے کال لگے نہ پی الحمدللہ اج لگی
1: جی منجا بھا حکم کیو
5: سر بتال پہ جی طبیعت صحیح نہیں
1: ہاں
5: او 7000 نہ तकरीबन को लख ब खर्च कयो को एफ एम ते बुधो से डॉक्टर मंजूर सर वटाया बे
1: जी दा
5: ओ अल्लाह जे मेहरबानी सा टिन चैन कोरसन में बा सही थिया बे
1: माशाल्लाह माशाल्लाह
5: ओ एक ब पेशेंट जे पास वरी बियो ब मु आंदो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह साईं जा एहसान है नी डॉक्टर सही वट चला
1: बस अल्लाह साईं जी जात शिफा देण वारी आहे ॾिसो तव्हां पाण ॻाल्हि था कयो पिया तव्हां लख भरिया हुया जिते उते डॉक्टर साहिबु वटि आयो त हिकिड़ी अलाह साईं ज़ात शिफ़ा ॾिनी
5: साईं ॿुधो इहो जेको आहे मूं 2 साल अढाई लोड़ियो पोइ को झटको हुयो छाप हुयो अंग्रेजी दवाऊं खाई खाई आख़िर ॻाल्हि सम्झ में न पई अचे आरज़ी धको
1: जी जी
5: मुंहिंजे हथनि जूं आङुरियूं कमु न पिया कनि किबला
1: अच्छा
5: हा बस पोइ साईं वटि आयासीं शायदि त 2 कोर्स या 3 वरितासीं को शफ़ा जो टाइम साईं वटि लिखियल हुयो
1: बिल्कुलु ईअं ई हूंदो आहे बिल्कुलु ईअं ई हूंदो आहे महिरबानी मुंहिंजा मिठा भाउ तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल कई मुंहिंजा सॼण साईं महिरबानी डॉक्टर साहब ही साईं हुयो जेको तव्हां खां को इलाज करायो हुयो हुन खे शिफ़ा मिली आहे त ॾाढो ख़ुशि हुयो ऐं ॿियनि खे बि असां दोस्त ॾस ॾिनो आहे अव्हांजो
2: ॾिसे वॾी महिरबानी त फीडबैक ॾियण सां हिकिड़ी हिमत अफ़ज़ाई थींदी आहे माण्हू जेको हौसला अफ़ज़ाई वधंदी आहे ऐं न सिर्फ़ु असांजी बल्कि जेके असांजा ॿुधंदड़ हूंदा आहिनि ऐं मां जेके जेकॾहिं कंहिंखां व्यूज़ वठंदो आहियां त उहो बि इहा ई हिकिड़ी कड़ी हूंदी आहे त उन्हनि ॿुधंदड़नि जे लाइ असुल में सबक़ु हूंदो आहे त तव्हां लखे रुपया ॿिए हंधि ख़र्चु कयो था ऐं शिफ़ा ॾियण जी ज़ाति रब ताला जी आहे लेकिन ॾिसो त उतां फ़र्क़ु कुझु कोन पवंदो आहे ऐं आरज़ी तौर ते ज़रूरु तव्हांखे कुझु फ़र्क़ु महसूसु थींदो हूंदो लेकिन जान कोन छुटंदी आहे कंहिं मर्ज़ जी असां वटि होम्योपैथिक में कुझु टाइम दवा इस्तेमालु करण सां मरीज़ जी जान छुटी वञे थी हीअ असां कोन चवंदा आहियूं जेके पेशंट पंहिंजी तकलीफ़ में हूंदा आहिनि जॾहिं फ़ाइदो पइजी वेंदो आहे उन्हनि खे उहे असां वटि अची पंहिंजा व्यूज़ रिकॉर्ड कराए वेंदा आहिनि या लाइव जीअं हींअर हिन ते मूंखे बि हींअर सही मन में यादि नथो अचे त कहिड़ो हूंदो आहे लेकिन यानी असां वटि आयो ऐं ट्रीटमेंट वठी वियो त अलहमदिल्ला इहा हिकिड़ी सुठी रब ताला जा कर्म आहिनि ऐं हिकु दफ़ो न आहे ऐं इलाजु होम्योपैथिक जो उतां करायो जितां मर्ज़ खे सुञातो वञे ऐं जिते मुयारी दवा मिले होम्योपैथिक सिर्फ़ु होम्योपैथिक जर्मन होम्योपैथिक वॾी
1: महिरबानी साईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक मेहरापुर 0301 9496 51 दोस्तनि खे चवंदासीं सुभाणे छंछरु जो ॾींहुं आहे ऐं छंछरु ते चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री आहे अवां सुबुह जो 10 वॻे खां वठी डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक ते अची वञो डॉक्टर साहिबु शाम 5 वॻे ते अव्हांखे क्लिनिक ते मौजूदु मिलंदो अॼोके प्रोग्राम जो बि वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते ॿिए प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान हाकिम अली जिस्कानी खे ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान ऐं अलाह वाहिगुरु।

अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 3 85 569 0300 3 8 5 6 9।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: It's 7:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: सर्विस टायर्स पाकिस्तान ग्लोबल टायर ब्रांड।

0: अमरीका ईरान विच में जंग के खात्मे लाए मायदो थियण जा इम्कान वधी विया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रवैये में चीन के दौरे बाद वड़ी तब्दीली। पाकिस्तान की दरख्वास्त ईरान से जंग बंदी करण की भी तस्दीक करे छी। बीजिंग में वापसी ते जहाज में साफियन से गालाइंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो ता मां जंग बंदी के हक में न हुयस। पाकिस्तानी क्यादत शानदार है, असा जंग बंदी वारो फैसलो पाकिस्तान के चवण ते एक फेवर तौर कयो। ईरानी तजवीजू मुकम्मल तौर ते कबूल चोगियूं ना आहिनि। 20 सालन ताई एटमी प्रोग्राम मुअत्तल करण वारी तजवीज सुठी आहे। यूरेनियम जे रचाव बाबत लेवल जी जमानत तसली जोगी ना है। आपना हुर्मस बाबत कंहिं जी मदद जी जरूरत ना है। नई चीनी सदर के कंहिं मदद बाबत चयो आहे। कुछ ॾींहन में ईरान खां तेल वठंदड़ चीनी कंपनियुनि तां पाबंदी हटाइण जो फैसलो कयो वेंदो। ताइवान बाबत अमरीकी पॉलिसी तब्दील नाहे थी। ताइवान खे हथियार ॾियण जी मंज़ूरी नाहे ॾिनी। थी सघे थो मंज़ूरी ॾियां या न बि ॾियां। चीन सां तारीख़ी वापारी माहिदा थिया आहिनि जंहिंजो अमरीका खे फ़ाइदो थींदो। पाकिस्तान जी सालिसी में अमरीका सां ॻाल्हियूं नाकाम नाहिनि थियूं। मुश्किल मरहले मां गुज़री रहियूं आहिनि। जंग जी शुरूआत भी ईरान न कई हुई, रुगो पंहिंजो दिफ़ा कयो। जंग बंदी बरकरार रखण जी कोशिश करे रहिया आहियूं। आपना हुर्मुस में गंडकन जो ज़िम्मेवार बि ईरान नाहे। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राक्षी चयो आहे त असां वटि अमरीका ते इतबार करण जो बि को जवाज़ नाहे। माहिदे खां पहिरीं सभु शयूं वाज़े थियण घुर्जनि। चीन असांजो स्ट्रेटेजिक भाईवार आहे। अमरीका सां ॻाल्हियुनि में यूरेनियम जो रचाव 1.5 लाख जो शिकार आहे। आबना हुर्मुस अमरीकी जारियत जी मुकमल ख़ात्मे बाद ई खुली सघंदो। आबना हुर्मुस हिन वक़्त बि जंग में मुलविस मिलन खां सवाइ ॿियनि लाइ खुलियल आहे। ताक़त जो इस्तेमाल नतीजा न ॾींदो। ईरान जे एटमी प्रोग्राम समेत समूरनि तकरारनि जो हल मुशावरत सां निकरणु घुर्जे। मसइले जो हल तकिड़ो हल अमरीका ईरान ऐं ॿियनि मुल्कनि जे मफ़ाद में आहे।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: ਆਇਰਨ ਸਟੋਰ ਹਾਲਾਣੀ ਹੋਲਸੇਲ ਡੀਪੂ ਅ ਨੇਮ ਟੂ ਬੀ ਟ੍ਰਸਟਿਡ
1: ਸਰੀਆ ਗਾਰਡਰ ਟੀਅਰ ਏਂਗਲ ਚੈਨਲ ਪੱਟੀ ਲੋਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਿਲਵਰ ਜਾ ਚੌਂਕ ਸੀਮੇਂਟ ਰੇਤੀ ਕ੍ਰੇਸ਼ ਐਂ ਰੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਂ ਬਾਰੀਆ ਦਸਤਿਆਬ ਆਹੀਂ
0: ਹਾਣੇ ਯਚੋ ਮਹਿਰਾਨ ਆਇਰਨ ਸਟੋਰ ਨਜ਼ਦ ਬਲੋਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹਾਲਾਣੀ
1: ਰਾਬਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਮੁਗਲ 03003204372 ਐਂ 02424601000
2: इर्शाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इर्शाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इर्शाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इर्शाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003

0: कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383-85-569-0300-33-8-55-69।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: किसानों के

0: iron store Halani, wholesale depot, a name to be trusted.
1: Sariya, Garder, Tier, Engel, Channel Patti, Lohi Darwaza, Silverja Chong, Cement, Reti, Kresh, Ai Rang Vagera, Bazar Kham Bariya, Dastyab Ain.
0: Hane Yachu, Mehran Iron Store, Nazd Baloch Petrol Pump, National Highway Halani.
1: Rabte Lai, Proprietor Gulam Nabi Mughal, 0300-320-04372, Ai 0242-460100.
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
0: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर आई

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बे डरंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अमेरिका ईरान विच में जंग जे खतो थण जा अमेरिकी सदा दोनों दरख्वास्त ईरान सा जंग बंदी करण जी भी तस्दीक करे छदी। बीजिंग मां वापसी ते जहाज में साफियन सा गालाइंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त मां जंग बंदी जे हक में न होयस। पाकिस्तानी क्यादत शानदार आहे, असां जंग बंदी वारो फैसलो पाकिस्तान जे चवण ते हिकु फेवर तौर कयो। ईरानी तजवीज़ू मुकमल तौर ते क़बूलण जोगियूं न आहिनि। 20 सालनि ताईं एटमी प्रोग्राम मुअतल करण वारी तजवीज़ सुठी आहे। यूरेनियम जे रचाव बाबति लेवल जी ज़मानत तसली जोगी न आहे। आबराए हुर्मुस बाबति कंहिं जी मदद जी ज़रूरत न आहे। नई चीनी सदर के कंहिं मदद बाबति चयो आहे। कुझु ॾींहनि में ईरान खां तेल वठंदड़ चीनी कंपनियुनि तां पाबंदी हटाइण जो फ़ैसिलो कयो वेंदो। ताइवान बाबति अमरीकी पॉलिसी तब्दील नाहे थी। ताइवान खे हथियार ॾियण जी मंज़ूरी नाहे ॾिनी। थी सघे थो मंज़ूरी ॾियां या न बि ॾियां। चीन सां तारीख़ी वापारी मुआहिदा थिया आहिनि जंहिंजो अमरीका खे फ़ाइदो थींदो।
2: نه برای هر دو سناریو آماده ایم، یا به میدان مبارزه برمیگردیم یا به جنگ برمیگردیم یا به مذاکره برمیگردیم یا مذاکره میز مذاکره برمیگردیم و مذاکره میکنیم و راه دیپلماسی رو پیش میگیریم و به میز دیپلماسی برمیگردیم. ما برای هر دو آماده ایم و هیچ فرقی نداره برای ما، بستگی داره که طرف مقابلمون چی رو انتخاب کنه.
1: पाकिस्तान जी सालिसी में अमरीका सां ॻाल्हियूं नाकाम नाहिनि थियूं। मुश्किल मरहले मां गुज़री रहियूं आहियूं। जंग जी शुरूआति बि ईरान न कई हुई, रुगो पंहिंजो दिफ़ा कयो। जंग बंदी बरक़रार रखण जी कोशिश करे रहिया आहियूं। आपणे हुर्मुस में रंडकनि जो ज़िमेवार बि ईरान नाहे। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ईरानी वॾी वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त असां वटि अमरीका ते इतबार करण वास नाहे। मुआहिदे खां पहिरीं सभु शयूं वाज़े थियणु घुरिजनि। चीन असांजो स्ट्रेटेजिक भाईवार आहे। अमरीका सां ॻाल्हियुनि में यूरेनियम जो रचाव 1.5 लाख जो शिकार आहे। आपणे हुर्मुस अमरीकी जारी जी मुकमल ख़ात्मे बाद ई घुरी सघंदो। आपणे हुर्मुस हिन वक़्त भी जंग में मुलविस मिलण खां सवाइ ॿियनि लाइ खुलियल आहे।

ताक़त जो इस्तेमालु नतीजा न ॾींदो. ईरान जे एटमी प्रोग्राम समेत समूरनि तकरारनि जो हल मुशावरत सां निकिरणु घुर्जे. मसइले जो हल तकिड़ो हल अमरीका, ईरान ऐं ॿियनि मुल्कनि जे मफ़ाद में आहे. चीनी परडे॒ही वज़ारत चयो आहे त तकरार जे निपेरे लाइ ॻाल्हियुनि ऐं राब्ते वारो सिलसिलो बि जल्द बहाल थियणु घुर्जे. ईरान जंग शुरू ई न थियणु घुर्जे. हा, जंग जो जारी रहण कंहिं जे बि मफ़ाद में न हूंदो. चीन सदाई ॻाल्हियुनि ऐं सिफारतकारी खे ई हथी ॾिनी आहे. पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बलोचिस्तान जे 11 तरक़ियाती मनसूबनि जो इफ़्तिताह करे छॾियो. बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त पीपल्स पार्टी सदाई अवाम दोस्त सियासत करण सां गॾु मनसूबा ॾिना आहिनि. मुल्क में अमीर तोड़े ग़रीब लाइ सिहत जो हिकु निज़ाम हुजणु घुर्जे. ख़िते समेत दुनिया में मुश्किलातनि सबबि पाकिस्तान में बि परेशानी आहे. सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली ख़ुर्शीद जा सिंध हुकूमत ते संगीन इल्ज़ाम. सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो नालो तब्दील करण जो मुतालबो. अली ख़ुर्शीद चयो त सिंध जे हर खाते में करप्शन आहे. को बि कम पैसनि खां सवाइ न थी रहियो आहे. असिस्टेंट कमिश्नर बि मुक़ररी लाइ 3-7 करोड़ ताईं ॾे थो. सोलर प्रोजेक्ट में वॾी करप्शन थी, अवाम खे फुरियो वियो. अरबें रुपयनि जी कणक कुआ खाई वञनि था. वज़ीर चवनि था चोरी नाहे थी. सिंधु दरिया ते तामीर थींदड़ कश्मोर कंद कोट पुल ठहण दौरान ड्रही रही आहे. कराची जो अमन ॾिसो, घरू वज़ीर खे तमगा ॾिना पिया वञनि. सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो कम रुगो पैसा वठी नौकरी ॾियण रहिजी वियो आहे. मखसूस साहब जो पुट पास ऐं सिंध जो अवाम फेल थी रहियो आहे. सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जा अमलदार सरेआम रिश्वत वठी रहिया आहिनि. सिंध जे वसीलनि खे खाईंदड़ कुअनि खे पकड़ण बदिरां बचायो पियो वञे. सिंध हुकूमत जो कुकेन क्वीन पिंकी वारे केस खे मिसाल बणाइण जो ऐलान. सिंध असेंबली में ॻाल्हाईंदे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम अहमद चयो त मनशियात रुगो सिंध न पर समूरी दुनिया जो मसइलो आहे. सिंध खे मनशियात खां पाक कयो वेंदो. असेंबली मेंबर्स जी मनशियात टेस्ट कराइण ते बि को एतराज़ नाहे. अपोज़िशन लीडर मामले ते सियासत करे रहियो आहे. पिंकी जी फहिरिस्त में शोबिज़ जा सितारा बि शामिल आहिनि. घरू वज़ीर सियाल हसन अंजार चयो त सिंध पुलिस वफ़ाक़ी इदारे सां गॾिजी पिंकी खे गिरफ़्तार कयो. केस ते जांच हलंदड़ आहे. मामले ते न ॻाल्हायो वञे. जांच बाद असेंबली इजाज़त ॾिनी त ताला बि ज़ाहिर कया वेंदा. पिंकी केस खे मिसाल बणायो वेंदो.

0: कुकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की निशानदेही से बोल संसवानी रोड से पुलिस जो फ्लैट से छापो वही मकदार में मनशियात हथ सचल थाने ते केस भी दाखिल किया पुलिस मूजिब पिंकी की निशानदेही से बंद पियल फ्लैट से छापो हयो वो जिता मनशियात हथ आई जांच दौरान पिंकी पारा बीमारी की शिकायत से संदस मेडिकल चेकअप भी कराया वो अस्पताल जरिए मूजिब पिंकी के गुटे मादे की शिकायत से अस्पताल आंदो वो हो जिते संदस टेस्टू कई हुई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमात बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307359212।
3: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 333 8569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437 आई 0242460100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GA FM 94।

0: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में. डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर सूमर

मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।

0: ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं
2: बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है।
1: मेरे बाबा ने मेरी बात पक्की कर दी है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, मुझे माफ कर देना।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन
1: न्यूज़। पाकिस्तानी कहता शानदार है असा जगबंदी वालों फैसलो पाकिस्तान के चवण से एक फेवर तौर कयो ईरानी तजवीजों मुकम्मल तौर से कबूल चौकियों ना वी साल एटमी प्रोग्राम मुअल कर वाली तजवीज सुठी है। यूरेनियम के रचाव बाबत लेवल की जमानत तसली जोगी ना आकर हरमोस बाबत कें मदद की जरूरत ना नई चीनी सदर के कें मदद बाबत है। कुछ डी में ईरान का तेल वठंदड़ चीनी कंपनियों तां पाबंदी हटाने जो फैसलो कयो वेंदो। ताइवान बाबत अमरीकी पॉलिसी तब्दील ना थी ताइवान के हथियार देने की मंजूरी ना दिनी थी सके तो मंजूरी दिया या न भी दिया चीन सा तारीखी व्यापारी मुहिदा थे जो अमरीका के फायदो थो।
2: ما برای هر دو سناریو آماده ایم، یا به میدان مبارزه برمیگردیم یا به جنگ برمیگردیم یا به مذاکره برمیگردیم یا مذاکره میز مذاکره برمیگردیم و مذاکره میکنیم و راه دیپلماسی رو پیش میگیریم و به میز دیپلماسی برمیگردیم. ما برای هر دو آماده ایم و هیچ فرقی نداره برای ما، بستگی داره که طرف مقابلمون چی رو انتخاب کنه.
1: पाकिस्तान जी सारे सी में अमेरिका सा गारियो नाकाम नाहन थियो मुश्किल मरले मा गुजरे रहियो हैं। जंग की शुरुआत की ईरान न कई ही रुगो पेंचो दफा कयो जगबंदी बरकरार रखन जी कोशिश करे रहया हियो। आपदा हरमोस में रंडकन जो जिम्मेवार भी ईरान ना है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ईरान परदेही वजीर अब्बास राक्षी चयो आहे त असा वट अमेरिका ते इतबार करण जो भी को जवाज ना है। वायदे का पहरी सब शयूं वाजे थन कुजन चीन असा जो स्ट्रेटजिक भाईवार आहे अमेरिका सा गालियन में यूरेनियम जो रचाव 1.5 लाख जो शिकार आहे। आपना हरमोस अमेरिकी जारियत के मुकम्मल खात्मे वादी खुली सकंदो। आपना हरमोस इन वक्त भी जहाज में जंग में मुलविस बुलन का सिवाय बेन लाए खुलेल आहे। ताकत जो इस्तेमाल नतीजा न दी ईरान के एटमी प्रोग्राम समेत समूरन तकरारन जो हल मुशावरत से निकरण घुर्जे मसल जो हल तकड़ो हल अमेरिका ईरान बेन मुल्क के मफाद में है। चीनी पढ़ाई वजारत है तकरार के निबेरे लाए गालियन राबते वो सिलसिलो भी जल्द बहाल थे घुर्जे। ईरान जंग शुरू ही न थियन घुर्जे। हाँ जंग जो जारी रहन कें भी मफाद में न हों। चीन सदाई गालियन सिफारती कारी के ही हथी दुनिया है।

चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी बलोचिस्तान के 11 तरक्याती मनसूबन जो इफ्तिताह करे छो। बिलावल भुट्टो सरदारी पीपल्स पार्टी सदाई अवाम दोस्त सियासत करण सा गड मनसूबा दिना मुल्क में अमीर तोड़ी गरीब लाए।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।